तेरा इकरार। मैंने कहा बेबी तुमने पूछा क्या सनम, जो भी चाहो मानता हूँ खाता हूँ कसम, खाना मैं बनाऊँ तुम कर लो हजम, झाड़ू पोछा कर लूंगा जान जाए दम, प्यार प्यार जो भी चाहो दे देंगे हम, दे देंगे।